0: Nangshobe, Kuni Pibar, Gasushu, Sane, Hasatongi, Lingor Shalam, Paho Tongi Ninjam, Luji Kabar, Leo Yehuji, Chu Chi Nanga, Nani Chu, Jig Dun Sum, Yehu Gugu, Dun Nani Chu.
1: Oh yeah, thank you. Lingo Taki Hongo Ding, Lord Chu the Kondoa, Desinda. Tari Hongo de Naranzu Sabur Dote. ये ठीक है जिक्सिंदा, इन्हें दे, ये नालों दे जिक्सिंदा, दे, बेर चिन्ये में तो दे, दे सिंदा, दे, इन्हें या सोप्त दे जिक्सिंदा,
2: बहुत ही गंदा हो गया हम बोले,
3: जिक्का।
4: तैयार चाहा किसा,
5: चाहते ले दूर दूर चुगे,
4: चाहा दिस दिस के बाद क्या हो मारे, रामपुर लो चिंचिने मारे, हनी
6: 前三家的捐钱人都拿，
4: 这哪不也不是钱意。叔叔这蒙牛的店家韩立芳排队单的这个话的，都是干么就赚钱，婆婆单，叔叔这蒙古人呢，就是地来人自己婆婆单，俺的叔叔单呢，这也不是人给。
6: 这要我是啥啥，都是要做苦啥了。
4: 你让了排队单呀的韩立芳给，吞下三百的人单，
6: 去了呀，你们我了呀，没事西西的单，
4: 南部了呀，哪不帮不，也不是要的。
7: 韩立芳的，我那也要多。韩立芳跟踪点的，阿妈那个班的，名字也不是老热闹。他是温州传媒全国长，韩立芳从康，公司彭龙书，米州三百五，韩立芳从康，林国下南区杰克布洛车开去韩立芳从康。我啥不的，我呢，现在面这个半夜要多啊，你就这样不行不？ 养过，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初还哄我爹，花不钱不送账，刚搬到这个厂，刚被说到证明拿照顾，很巧不多啊。